भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती ने गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम दियो तांची आन, निरपो निरपै होए भजिए भगवान। भगत नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

तरदा की हुकुम है। अमृत सख के सेवा ते सिमरन विच जुड़ना है। गल एखे ही मुक नहीं जांदी वे तू अमृत सख लिया है ते तेरी ड्यूटी मुक गई है। नहीं, तेरी ड्यूटी ते हुण शुरू हुई है, तेरी सेवा ते हुण शुरू हुई है। अमृत सख के सेवा ते सिमरन भी करना है। अज आनंदपुर साहिब दे विच दीवान सजिया है, बहुत सारिया संगतां बैठिया ने ते विच कलगीधर पातशाह बैठे ने। सतगुरु आखण लगे वे गुरसिखो मैनू प्यास लगी है। अज संगत दे विचों एक गुरसिख उठिया, लंगर दे विच गया ते एक बाटे दे विच पानी

नानक कस मल जाए कस मल जाए हर गां नानक कस मल जाए रवन रव रव मर गे गे गे मर मद मद मर गे हरे कृत निधि धन कृत निधि धन कृत।

पार्श पेट स्पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जाय हर घनन के।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल जास चरण कमल जास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास ना ये रामदास सरी ना ये रामदास सरी दास सरी दास सर ना ये रामदास सरी ना ये रामदास ना ये रामदास सरी हम अब गुण बरे एक गुण नाही।

सुतदारा शो प्रीत लगाई एक उत्तम पल सुनियो गुरु संगत एक उत्तम पल सुनियो गुरु संगत।

रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणंग रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणंग सतगुर सेव अलखगत जाकी।

ना ये राम दा सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजू देख कियो फिर अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

बाबा फरीद जी एक बार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। इत्थे एक शब्द आया है जे ते नाला कप्पिया नाला उसनू कहंदे ने। पाकिस्तान दे विच जदों तुसीं लेंदे पंजाब विच जाओ लेंदा पंजाब मुल्तान चंग सरगोदा लैलपुर यह लेंदा पंजाब है। बाबा फरीद जी कहंदे ने इतना दुख है इस संसार च ते नाला कहंदे ने।

कौन कौन दुखी है, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आगे आकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार होवे। ए भी तां इक दुख है। अज दा शब्द है नानक दुखिया सब संसार। आप जी ने बहुत बार श्रवण किया शब्द, इहदे विच एक अखर आया बाली। बाली कहंदे ने इस्त्री।

外比天开，ऐ सी दर गए मिले सजाए। अजय राजा बड़ा धर्मात्मा सी, हर पासे इसकी बड़ी शोभा सी। सत्संगत चंगा काम करना ये बड़ा औखा है। अकाल पुरख तुहानू कदे चंगे काम करन दा समा देंदा है, बुरियाईयां ते जिसले मर्जी कर लो। बुरा काम करना होवे जदों मर्जी कर लो, लेकिन चंगे काम करन दा कदे कदे समा मिलदा है। कई लोग तो उसनों ही गवा देंदे ने, कई लोग कहंदे ने अमृत वेले नहीं उठाया जांदा। ते हजूर कहंदे के बुरे काम को ऊठ खलोया। जे किते को संगत विच जाना होवे जुआ खेलदिया खेलदिया सारी रात गुजार देगा, ते जे किते रहन सवाई कीर्तन च बैठना पवे ते घंटे बाद नींद आ जाएगी। आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। राजा अज चंगा कम करन दा समा आया। अज तां राजे ने चंगियाई करनी है, चंगियाईयां ते वैसे ही बहुत करदा सी, पर अज चंगियाईयां दा रिजल्ट है। राजा खड़ा घोड़ियां दा जिथे तबेला सी, तबेला उसनों कहंदे ने जिथे राजे लोग घोड़े रखते सन उन्हों तबेला कहंदे। एक बहुत सारी वड्डी हवेली हुंदी है, जिस तरह ग्राउंड हो गया। कहंदे ने कि राजा खड़ा सी अपने तबेले विच ते एक संत आ गए। ये कौन सी? रब दा प्यारा, रब नाल प्यार करन वाला, ते सात संगत दोवां दा मेल हो गया। एक पासे दुनिया नाल प्यार करन वाला खड़ा, एक पासे रब नाल प्यार करन वाला खड़ा है। ते ए रब दा प्यारा कहन लगा, राजा मैं तैनू ढूंढ के आया, इसलिए मैं तेरे कोल आया कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मेरी कच्ची चोपड़ी है, ते मैं सोचिया कि दुनिया तो की मंगना, राजे तू जाके मंगी है कि राजा इतना तो कुछ दे देगा, रहने लई मेरा मकान बन जावे, खान लई मैनू भोजन मिल जाए, पान लई मैनू कपड़ा मिल जाए। आखिर तो तू राजा ही है ना। कदे तू इस गल दा ध्यान कीता कि तेरी प्रजा विच कोई दुखी भी है? मां पुरुष ने रब दे प्यारे ने इतने बचन कीते, पर राजा चंगा तो बड़ा सी, पर उस दिन पत्थर हो गया।

औरत के जिस तरह औरत अपने पति को बगैर नहीं रह सकती, ऐ अकाल पुरुष तू मेरा पति, इसी तरह मम्मी तेरे बगैर नहीं रह सकती।

परमेश्वर दे नाल इस तरह प्यार करता है इस तरह जिवें मच्छी पानी दे नाल प्रीत करती ओ पानी तो बगैर नहीं रह सकती कि मैं अपने प्रभु तो बगैर जिंदा नहीं रह सकता।

गुरुवाणी के पर्दा विपरीत है रबना असली लोग कि प्रीत करते हैं साढ़े बारे भी भगता ने गुरुआ ने अपनी बाणी बयान किया भगत रविदास असी लोग कैसी प्रीत करने और कि करनी है।

जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावा रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावा हर आपे ही मत देवा स्वामी हर आपे बोल बुलावा हर आपे पंच तत् विस्तारा बिच धातु पंच आप पावा जन नानक सत।

इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हन कि ऐ जीव क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए कोई पता नहीं कदों मरना किथे मरना और मरण दा कारण की बनेगा इस गल दी खबर रावण वर्गे नहीं पा सके जिन्हां ने काल नूं चार पाई नाल बनिया होया सी हरनाकश वर्गे जिन्हां ने वरदान लै रखे सन ना धरती ते मरा ना आकाश ते मरा ना दिने मरा ना राती मरा ना मनुख पासों मरा ना जानवर पासों मरा ना किसे मनुख पासों ही मर सका मैनू कोई मारन वाला ना रहे पर जदों अंत समा आया ता फिर सारिया नू जाना पैंदा है पता नहीं की कारण बनेगा हर एक दी मौत दा कारण है मौत आउंदी नहीं बुला लेंदी है जदों समा आउंदा है ना उदों बुला लेंदी है इसलिए गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे हन ऐ गुरु के लाल मौत नू हर वेले चेते रख ते जे मौत नू चेते रखेगा एक तां तेरा दुनियादारी नाल माया अते तन दौलत पदार्थां दे नाल सने घटेगा क्योंकि पता है ये छड जाना है दूसरा फिर तैनू साहब चेते आवेगा ते जिन्हां नू साहब चेते आउंदा उन्हां दा संसार ते आउणा भी सफल हो जांदा संसार तो जाना भी सहला हो जांदा सफल हो जांदा आउणा ते जाना सफल करन लई हजूर कहंदे हन जेकर साहब मनो ना विसरे तां तेरा सहला मरना इसलिए क्या जाना किवें मरेंगे कौन जानदा कदों अखीरला श्वास है हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी है मत के जापे छा आवे के ना आवे राम गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शे।

ढाल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी धर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इस दे मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। ता कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। तिस वेले शिकारी ने खिच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

बाहर की अगन जा बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन ज्यों बुझे जल

खात पीत खेलत हस्त परम जन्म अनेक पव जनते कांडो प्रभु नानक तेरी टेक।